मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले टोटा हिरा साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निध हरे खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए सलोक संत मंडल हर जस कथा है बोल है सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक सौ लिव लाए पौड़ी सप्तम संचहो नाम धन टूट न जाहे पंडार संत संगत मह पाई अंत न पारावार आप तजहो गोबिंद भजहो शरण पर हो हर राय दुख हरै भव जल तरै।

पूर्ण परताप दसे दिशा रव्या प्रभ एक धरन आकाश सब मह प्रभ पेख जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तह बसह दयाल सूखम असथूल सगल भगवान नानक गोरमुख ब्रह्म पछान सलोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोबिंद संत प्रसादी भय मिटे नानक बिनसी चिंद पौड़ी अमावस आत्म सुखी भये संतोख दिया गुरदेव मन तन शीतल सांत सहज लागा प्रभ की सेव टूटे बंधन बहु बेकार सफल पूर्णता के काम दुर्मत मिटी होमे छुटी सिमरत हर को नाम सरन गही पार ब्रह्म की मिटिया आवा गवन आप तरिया कुटंब स्यो गुण गोबिंद प्रभ रवन हर की टहल कमावनी।

खटिया गुरमुख सबद विचार होमै मैल बिख उतरै हर अमृत हर उरतार सब कारज तिनके सिद्ध है।

जन नानक गुरमुख उबरे जाप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दास नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिन का सब दुख गवाया।

जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बखस लए सो साहिब मन भाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। सलोक महला चौथा, हर सत निरंजन अमर है निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपिया एक मन एक चित तिन लथा होमै भार, जिन गुरमुख हर

दोही सिरी खसम आपे वरतै, नित कर कर देखै चलत सबाए। महला चौथा, एक मन एक वरतदा, जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरिया, जे घर वथ होवै साई खाए। बिन सतगुर सोजी ना पवै, अहंकार ना विच हो जाए। अहंकारियां नो दुख भुख है, हाथ तड़है घर घर मंगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहै, मुलम्मा पाज लह जाए। जिस होवै पूरब लिखिया, तिस सतगुर मिलै प्रभ आए। ज्यो लोहा पारस भेटियै, ज्यो लोहा पारस भेटियै, मिल संगत सुवरण होए जाए। जन नानक के प्रभ तू धनी, ज्यो भावै तिवै चलाए। पौड़ी, जिन हर हृदय सेविया, तिन हर आप मिलाए। गुण की साज तिन स्यो करी, सब अवगण शब्द जलाए। औगण विकण पल्लरी, जिस देह सो सच्चे पाए। बलिहारी गुर आपणे, जिन औगण मेट गुण परगटी आए। वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुख आलाए। सलोक महला चौथा, सतगुर विच वड्डी वड्याई। जो अनदिन हर हर नाम त्यावै, हर हर नाम रमत सुच संजम। हर नामे ही त्रिपतावै, हर नाम तान हर नाम दीबान। हर नामो रख करावै, जो चित लाए पूजे गुरमूरत। जो चित लाए पूजे गुरमूरत, सो मन इच्छे फल पावै। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार दिवावै। फिर ओह वेला ओस हाथ ना आवै। ओह अपना बीजिया आपे खावै, नरक घोर मोहे कालै खड़िया। ज्यो तस्कर पाए गलावै, फिर सतगुर की सर

0: सब जन को आए करहै रहरास, गुरपुरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया, गुरपुरै दान दिया हर नहचल, नित बखसे चढ़ै सवाया, कोई निंदक वड्याई देख ना सकै, सो करतै आप पचाया, जन नानक गुण बोलै करते के, भगता नो सदा रखदा आया, पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है, वड दाता दाना, तुद जेवड़ मैं होर को दिस ना आवई, तू है सुगड़ मेरा मन भाणा, मोह कुटंब दिस आवदा, सब चलन हारा आवन जाना, जो बिन सच्चे होरत चित लाए दे, से कूड़ियार कूड़ा तिन तिन माणा, नानक सच ध्याए तू, बिन सच्चे पच पच मुए अजाणा।
1: श्लोक महला चौथा। अगो दे सत भाव न दिचै, पिछो दे आखिया कम न आवै, आद विच फिरै मनमुख बेचारा, गली क्यों सुख पावै, जिस अंदर प्रीत नहीं सत गुर की।

आए बेन गुर मनुआ ना टिकै फिर जूनी पाए हर प्रभ आप दयाल हो ता सतगुर मिलिया आए जन नानक नाम सलाहे तू जन्म मरण दुख जाए महला चौथा गुर सालाही अपना बहु बिद रंग सुभाए।

मन भूख है, मन तृप्त है, हर रस खाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानिए, दिन राती जिन बनाइया, सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे किया वडियाइया, सलाही सच सलाह सच, सच कीमत कने।

साध जना विचारिया सत पुरख की तपा निंदा करै संसार की उस्तत विच होवै एत दुख है तपा दईये मारिया महापुरखा की निंदा का वेख जे तपे नो फल लगा सब गया तपे का कालिया बाहर बह पंचा विच तपा सदाए।

0: जप कमावै गुरसिखां की घाल सच्चा थाए पावै बिन सतगुर के हुक्मै जे गुरसिखां पासो कम कराया लोड़े तिस गुर सिख फिर नेड़ न आवै
1: वाहिगुरु जी गुरसिखां अंदर सतगुरु वरतै जो सिखां नूं लोजै सो गुर खुशी आवै इहदे विच आप नहीं हैगा आप जी तो भुलेखे ना आप बोलिया गया जो जो तो बाद आप नहीं हैगा कई बार सुनने वालिया नूं भुलेखा ना लग जावे भुलेखे नाल बोलिया गया पर इत्थे आप है नहीं फिर पढ़ दिओ भाई साहब जी
0: गुरसिखा अंदर सतगुरु वरतै जो सिखा नूं लोचै सो गुर खुशी आवै सतगुर आखै सो कार कमावन सो जप कमावै गुरसिखा की घाल सच्चा थाए पावै बिन सतगुर के हुक्मै जे गुरसिखा पासहु कम कराया लोड़े तिस गुर सिख फिर नेड़ न आवै गुर सतगुर अगै को जियो लाए घालै तिस अगै गुर

राम त्यो वे मुख हुए राम ते ज्यो तस्कर उपर सूल पौड़ी सुख निदान प्रभ एक है अविनाशी सुनया जल थल महियल पूरिया घट घट हर भणिया ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनया मीत सखा सुत बंधपो सब तिस दे जनया तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया सलोक महला पंजवा जिना सास गिरास ना विसरै हर नामा मन मंत्र

0: संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम सियो ए हस्ती घोड़े राज मिलख खुशिया घणी ध्याए मुख ना मोड़े ढाडी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े नानक मन तन चाओ ए हो नित प्रभ कौ दौड़े सुध कीचे।
1: ये जड़ा शब्द अखीर ते आया है शुद्ध कीचे, इहदा अर्थ दौनी टकसाल संप्रदाय पिंडरां दे महापुरख यही करते हैं भी ये जिन्हें भी श्लोक ने ते पौड़ियां ने ये तरतीब नू शुद्ध कीचे शुद्ध कीता है। क्यों? जदों गुरु अर्जन देव महाराज बाणी लिखवाउंदे सन फिर उहदे नाल सुधाई भी हुंदी सी ते इन्हां वारां दे विच जदों भी श्लोक दर्ज कीते कुछ पौड़ियां नवीआं भी दर्ज कीतियां ते फिर उस वेले शुद्ध शब्द लिखे है ते शुद्ध कीचे दा मतलब हुंदा है ये भी शुद्ध कीते हुए ने जिन्ने भी श्लोक ने ते पौड़ियां ने ते कोई शंका ना करे भी ये विच दोहा श्लोक ते दखणा छंद किवें आ गया, ये सारे शुद्ध करके ही लिखे गए ने, इहदा इह पाप समझणा। ते कई जिहड़े आधुनिक विद्वान ने वो कहिंदे भी शुद्ध कीचे दा अर्थ ये है भी इहनू शुद्ध कर लियो, भी शुद्ध कीते नहीं गए पर ये अर्थ नहीं है। इस गल दा ख्याल रखना भी शुद्ध कीचे दा अर्थ भी शुद्ध कीते गए ने ते इहनू शुद्ध कर लवो, जे शुद्ध करन लग पए ते फिर ते बहुत कुछ अदला बदली हो सकदी है, इहदा इह अर्थ नहीं आपां ग्रहण करना, जो सही अर्थ है उहनू ग्रहण करो। हाँ जी,

सागर सुख सागर माही पीव रहे जल निखुटत नाही कह कबीर भज सारिंग पानी राम उदक मेरी तिखा बुझानी।

जब लग मन बह कुंठ की आस तब लग हुए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कहिए काहे साध संगत बह कुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई नैनह देखत एहो जग जाई लाज न मरहो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा रहाओ अनेक जतन कर काया पाली मरती बार अनेक जतन कर काया पाली मरती बार अगन संग जाली चोआ चंदन मर्दन अंगा सो तन जलै काठ कै संगा कहो कबीर सुनहो रे गुनिया बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया।

बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाउ। नानक प्रभ अवनासी ताकी सेवन बिरती जासे। अनंत करह तेरे दासा जब पूर्ण हुई आसा। बिलावन महला पांजे वा ताती वाउ न लग गई पार ब्रह्म शरण आई। जो गिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया।

नाम ते आवाजन नानक सत गुर पूजया तिनहार पूजक पूजक रावा जिथे जाए ब मेरा सतगुरु सो थान राम राजे विसरना ही दातार विसरना ही दातार।

कथ कथ कथि कोटि कोट कोट देदा दे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाहि खाहि हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक।

के अग्गै रखिया जित दिसै दरबार। मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवै जानिया सब आपे सचियार। थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान। नानक गाविया गुणी निदान। गाविया सुनिया मन रखिया भाओ दुख पर हर। सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं। गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हाओ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावा जे तिस भावा। विन भाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई। वेखा विन करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानिक। जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए। चंगा नाउर खाए कै जस कीरत जग ले। जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के। कीटा अंदर कीटकार दोषी दोष धरे। नानक निर्गुण गुण करे गुण।

तिथै घड़िया सुरत मातमान बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर।

है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजेय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौने, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे, समस्ति बेपूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं इस्तनानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंतर जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता, अदो उर्द अर्दं अगं उग हरता, परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अछेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तस्त तामं, तेरा जूर चाचरी शांद, जले हैं, थले हैं, अपीत हैं, अपेय हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अपेश हैं, पुजंग पर्यात छंद, अगाध अबाध अनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमस्तवं निरनाथे, नमस्तवं परमाथे, नमस्तवं अगंजे, नमस्तवं अपंजे, नमस्तवं अकाले, नमस्तवं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृसं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी, चरपट छांद त्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले, रुआल छंद त्व प्रसाद, आद रूप अनाद मूरत, अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रेसाल, नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख, आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख, देश और ना पेस जाकर रूप रेख नाराग, जतर ततर दिशा विसा होए फैल्यो अनुराग, नाम काम बेहीन पेखत,
ਧਾਮ ਹੂ ਨਹਿ ਜਾਹੇ ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨਤ ਤਾਹੇ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਣ ਅੰਤ।

तीन चक्कर बकर फिर चतर चक मन ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब बिसव रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग रागना रंग जाक है जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकत दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जिह

बहुचित मद भार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अना

काल अनभूत अंग आभा अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरभय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भार नाढ़ आन दंड बाढ़ चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पूजांग पर्यात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर परती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर माने आए चत्तर चक्कर दाने आए चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना परमंग ना पितरै ना करमंग ना काय अजन्मंग अजाय ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथ्वी सै अदिसै अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजंग प्रभा हैं के धर्मंग तुजा हैं के आ शोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतंग कृति हैं के छत्रंग छत्री हैं के ब्रह्मंग स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रंग बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहीम हैं के कर्मंग करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान्याय के सर्वत्र दान्याय के सर्वत्र गौनाय के सर्वत्र पौनाय के सर्वत्र देसाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र साजाय के सर्वत्र दीनाय के सर्वत्र लीनाय के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र कालाय के सर्वत्र पालाय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र सोखाय के सर्वत्र पोखाय के सर्वत्र तराणय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र देसाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र भानय के सर्वत्र मानय के सर्वत्र इंद्रय के सर्वत्र चंद्रय के सर्वंग कलिमय के परमंग फहीमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामय रुजूअल निदानय हरीफुल अजीमय रजायक यकीनय अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं उवंग आद रूपे अनाद स्वरूपै अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुबंग सर्वभागे सो सर्वा अनुरागय त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं के नरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं प्रयुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रयुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपरम हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अभक्त हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं
अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्वय प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, ना पोत्रै ना पुत्रै ना सत्रै ना मित्रै ना तातै ना मातै ना जातै ना पातै, निरसाकं शरीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती छंद त्वय प्रसाद, के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चिराग हैं, के कामल करीम हैं, के राज करहीम हैं, के रोजी देहांद हैं, के राज करहिंद हैं, करीमुल कमाल हैं, के हुसनुल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल सिकान हैं, हिरासुल फिकान हैं, कलंकं परनास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजाय करहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब किरा हैं, के नरकं परनास हैं, बिहस्तुल निवास हैं, के सर्बुल गवान हैं, हमेशुल रवान हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परं परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेशुल अलेख हैं, हमेशुल अपेख हैं, जमीनुल जमा

रंग को रंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत शीस न जात बिचारे इते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पुधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मिरदांगन गारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलैंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार हसार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब सिरे सब को सिरे नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपैंगे जीव जिते जल मै थल मै पल ही पल मै सब थाप थपैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपैंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपैंगे मानव इंद्र गजिंदर नराधप जौन तेरे लोक को राज करैंगे कोट इसनानक जादिक दान अनेक स्वंबर साज बरैंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परैंगे जे नर श्रीपत के प्रास हैं पग ते नर फेर ना देह धरैंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिये सात समुंदरन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहाँ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह पातशाही दसवे कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन का आज संघरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरना त्याऊ जो बार चाहऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दै मुझै उबरियै मरण काल का त्रास निवरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा राख लिहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा
जवन काल जोगी सेवकियो बेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्तरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम

कर पाहन अनुमानत महा मूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप आपुनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा सिगरे सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जित उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रान काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित तो हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

कदम करे पलके परपाती, स्नान करे अमृत सर नहवे, उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल बिक पाप दुख लह जावे, चढ़ी दिव

जिसको नदर करे नानक मंगे दर्श दान कृपा करहो हरे तन सो वेला कड़ी तन तन मूरत पल सार तन सो तिन स संजोगड़ा

सावन सरसी कामणी चरण कमल संग प्यार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरबरे कायनात, पतित पावन भगत वत्सल करुणा निदान, जहरा जहूर हाजर हजूर, सर्ब कला समरथ सर्ब कला भरपूर, बालिये कुल आलम शाही शहनशाह, शब्द स्वरूप जुगो जुग अटल सतगुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र प्यारी निगी गोद अंदर, अमृत वेले दे सजे दीवाना दे अंदर पहुंच के दर्शन दीदारे करके सतगुरां दे चरणा ते नतमस्तक होके सज रही गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी वड्डे भाग ने सतगुरां दे दर्शन दीदारे होए ने, सतसंगत दियां अमोलक कड़ियां प्राप्त होईयां ने। आसा दी वार दे कीर्तन रोजाना दे नितनेम अनुसार सरवण कीते ने। समा होया है गुर शब्द दी लड़ी वार विचार दा, पर नाल ही बेनती करदे आं अज संगरांद दा दिहाड़ा है। संगरांद सूरजी कैलेंडर मुताबक देसी महीने की पहली तारीख हुंदी है। इहदे विच कोई होर बहम भरम नहीं। अज भावें असी कमर्शियल कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर की वरतों अपनी जिंदगी विच ज्यादा करते हैं, उहदे अनुसार साल की आरंभता के उत्ते बड़िया खुशियां मनाईया जांदियां ने। महीने की आरंभता से भी विशेष अरदास बहुत बारी सज्जन गुरमुख प्यारे करते ने, पर पुरातन जिहड़ी साडी रवायत है उहदे अनुसार देसी महीने हर महीने की पहली तारीख संगरांद हुंदी है, भावें इहदा पिछोकड़ संक्रांति शब्द नाल संबंध रखदा है। संक्रांति हुंदी है श्रेष्ठ क्रांति, यानी कोई खास तब्दीली, कोई खास चेंज, कोई खास बदलाव। कुदरत दे इस पसारे दे अंदर जो साडा सौर मंडल है, जिहदे विच साडी धरती है, इहदी बणतर इहदा सिस्टम कुछ भूगोलक नजरिए तो वेख्या पता लगदा है, जां खोज करन वालियां ने यह खोज कीती है वी सूरज उत्तर तो दक्षण ते दक्षण तो उत्तर नूं रुत अनुसार चलदा नजर आउंदा है। भावें यह सारी खेड ते धरती दी है, धरती अपना स्थान छड्डदी है ते उहदे अनुसार धरती दे किसी भी हिस्से विचों सूरज किन्ने डिग्री टेढ़ा दिखता है उहदे हिसाब नाल रुत्तां बणदियां ने। जां कह लईए सूरज दीआं किरणां किहड़े इलाके विच किहड़े देश विच धरती दे उत्ते किन्ने डिग्री ते टेढ़ियां पैंदियां ने, जां भूमध रेखा दे उत्ते 90 डिग्री सिधियां भी पैंदियां ने। ओ उतरायण ते दखनायण, नॉर्थ टू साउथ पोल, ओ सूरज दा जिहड़ा डिग्री दा टेढ़ा होना है इत्थों तब्दीली आउंदी है, इत्थों बदलाव आउंदे ने। ते 6 महीने इह सूरज दा जिहड़ा कहीए ओ पक्ष वी डिग्री टेढ़ी होण दा उत्तर वल है ते 6 महीने दक्षण वल है। ते इहनूं दास इस तरह भी बेनती करदा हुंदा है जिवें हाईवे दे उत्ते 6 ट्रैक बने होण
ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ, ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਐਂਗਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ। ਸੋ

जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। सूरा सो पहचानियै, जो लड़ै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै,

0: हाजरी आप संगत प्रवान करो, होइया भुला चुका खिमा बख्शिश करो। अगले समय वास्ते बहुत ही सत्कार योग भाई साहब भाई महेंद्र सिंह जी पड़ी वाले आप संगतां नूं गुरशब्द विचार नाल जोड़ना करनगे। बुलाओ जी फतेह सारी संगत, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द कीर्तन श्रवण करवा रहे सन, बहुत ही सत्कार योग भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी जामनी साहब वाले का रागी जत्था संगत वालों भाई साहब जी के जत्थे का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण बेनती करते हैं बहुत ही सत्कार योग बाबा महेंद्र सिंह जी भड़ी वाले कि वह आप जी ने गुरमत विचार श्रवण करवाउन जी। आप जी गुरमत विचार श्रवण करो जी, ते गुरु साहब जी दी खुशियां प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: जैसे आन तात में तनक ही कलंक डारे, अनक वर्ण मेट कनक परगास है। जैसे वृथा बंत जंत औखद हिताई हृदय, वृथा बल विमुख होए सहज निवास है। जैसे आन तात में तन की कलंक डारे, अनक बरन मेट कनक परगास है। जैसे कोट पार कर काष्ट एकत्र में, जैसे कोट पार कर काष्ट एकत्रता में, रंच की आच देत भस्म उदास है। तैसे गुर उपदेश उर अंतर परवेश भये, जन्म मरण दुख दोखन विनाश है। जैसे कोट पार कर काष्ट एकत्रता में, रंच की आंच देत भस्म उदास है। तैसे गुर उपदेश और अंतर परवेश भये, जन्म मरण दुख दोखन विनाश है।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शाही शहंशाह भगत वत्सल करुणा निदान जहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्व कला समर्थ सर्व कला भरपूर, लोक परलोक दे रखियक दीन दुनी दे पातशाह, शांति दे पुंज शब्द स्वरूप जुगो जुग अटल सतगुरु, धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र निक्की प्यारी अगमी गोद अंदर मनुखा जिंदगी दे कुछ घड़ियां कुछ पलां नूं सवासां नूं सफले करदिया होया, पातशाह दे चरणा ते नमस्कार कीती है। गुरु की गोद विच सजे हो वड्डे भागां दी निशानी है। तुरकी बाणी दे कीर्तन गुरमुख प्यारियां दी रसना तो सरवण कीते ने। सावण दे महीने दा शब्द भी कीर्तनी जथे ने पढ़िया है। आप जी दे ज्ञात विच है, खास करके बहुतियां संगतां अज विशेष करके

जक्षन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजाज ने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह धार सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार।

तन है भैव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत पुज खान बौहर राच दीनी। कहूं फूल राजा होए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई।

संगरो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेच करो रण काता जे अस तो जितव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तुत काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाप छुए सके न कोई एक बार जिन तुम

कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परिया रे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जान, सार न जाना तेरी।

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांद साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

कमल होवै परगास, गुरबचनी सुख उपजै पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए भाई, होइए सब की तूर, घट घट ब्रह्म।